चंदो आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन. कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं. हिरण मोई मित्रा तीन ताल में तबला वादन. कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग We first present a Hindustani instrumental recital. Listen to a tabla recital in Teen Taal. Our artist this morning, Devendra Kanti Chakraborty. Accompanying on the harmonium, Hiran Moy Mitra. Now, listen to a tabla recital in Teen Taal by Devendra Kanti Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे देवेंद्र कांति चक्रवर्ती। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरणमोय मित्रा। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बसंत मुखारी में मोहनलाल मिश्र का ख्याल गायन। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं देवाशीष अधिकारी। राग बसंत मुखारी में ख्याल गायन, कलाकार मोहनलाल मिश्र।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल बाय देवेंद्र कांति चक्रवर्ती, एकम्पानिंग ऑन द हारमोनियम हिरणमोय मित्रा। This is Ragam, 24/7 anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a Hindustani vocal rendition. Listen to a khayal in Rag Basant Mukhari. Our artist, Mohan Lal Mishra. Accompanying on the tabla, Devashish Sarkar, and on the harmonium, Devashish Adhikari. Now, listen to a khayal in Rag Basant Mukhari by Mohan Lal Mishra.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी में मोहनलाल मिश्र का ख्याल गायन सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग बसंत मुखारी by Mohan Lal Mishra, accompanying on the tabla Devashish Sarkar and on the harmonium Devashish Adhikari. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार. रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी. विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. साथ संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर. आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी.

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर रामभाऊ भोरपकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी वादन। राग पुरिया कल्याण, विलंबित गत झुमरा ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। सात संगत है बांसुरी पर देवेंद्र मुर्डेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। आइए सुनते हैं पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण।

अभी अपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग पुरिया कल्याण सुना। सात संगत थी बांसुरी पर देवेंद्र मुरडेश्वर, तबले पर पंडित निखिल घोष। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राकेश प्रसन्ना का

0: सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग, विलंबित गत मत्त ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है केदारनाथ ने।
1: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सरोद रिसाइटल बाय राकेश प्रसन्ना। ही बिगिंस बाय प्लेइंग राग शुद्ध सारंग। द विलंबित गत इज सेट टू मत्त ताल एंड द द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय केदारनाथ।

0: अभी आप राकेश प्रसन्ना का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी केदारनाथ ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिस्निंग टू राग शुद्ध सारंग ऑन द सरोद परफॉर्म बाय राकेश प्रसन्ना। द अकंपनीमेंट ऑन तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय केदारनाथ। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: Ragam 24/7 DTH Channel. नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सुनते हैं तबला वादन और पखवाज वादन. प्रारंभ में सुनते हैं अरविंद कुमार आजाद द्वारा प्रस्तुत तबले पर ताल तीन ताल. आपके साथ सारंगी पर है फारूक लतीफ खान. तो आइए सुनते हैं तबले पर ताल तीन ताल, कलाकार अरविंद कुमार

पंडित राम सहाय जी की रचना सुनिए, धा चक धा धा धरक चक धरक चक धरा त्रगन धर धर धर कट तक तुन्ना कट तक धा करन तना कट तक ना धर कट धा कट धिन्ना कट धिन्ना कट धा घड़ान तक कट धिक कट तक घड़ान कट कट धिक कट धिक कट धिक कट धिक कट धिक कट धिक कट धिक कट धान धिन्ना कट धिन्ना कट धिन्ना कट धा तड़ान धान कट घन धा धगन धा धत धगन धा त्रिक कट धा घन ता कलन कतन धा धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत धरकृत ध

अभी आपने सुना तबले पर ताल तीन ताल। कलाकार थे अरविंद कुमार आजाद। आपके साथ सारंगी पर थे फारूक लतीफ खान। और अब सुनते हैं पखवाज वादन। कलाकार है अर्जुन शेजवर। प्रारंभ में आपने पखवाज पर प्रस्तुत किया ताल धमार सुनते हैं। आपके साथ हारमोनियम पर है जगन्नाथ घोड़के।

Take it back.

अभी आप सुन रहे थे पखवाज पर ताल धमार, कलाकार थे अर्जुन शेजवार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं पखवाज पर ताल चौताल, कलाकार अर्जुन शेजवार। आपके साथ हारमोनियम पर है जगन्नाथ घोड़के।

ಧಾನ್ ನಾ ತಿಟ್ಟ ಧಾನ್ ನಾ ತಿಟ್ಟ ಧಾನ್ ನಾ ತಿಟ್ಟ ಧಾ.

अभी आप सुन रहे थे पखवाज पर ताल चौताल। कलाकार थे अर्जुन शेजवर। आपके साथ हारमोनियम पर थे जगन्नाथ खुड़के। आज के कार्यक्रम में प्रारंभ में आप सुन रहे थे तबला वादन। कलाकार थे अरविंद कुमार आजाद। और अंत में आपने सुना पखवाज वादन। कलाकार थे अर्जुन शेजवर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल। भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग मालकौंस पर ख्याल गायन सुनवाएंगे. कलाकार हैं दिलीप कुमार पात्रो. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग मालकौंस पर ख्याल गायन. कलाकार हैं दिलीप कुमार पात्रो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. Listen to a khayal in the rag Malkaus. Our artist is Dilip Kumar Patro. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to a khayal in the rag Malkaus. Our artist Dilip Kumar Patro.

Ma ga ni da ni sa ga ma da ga ni da ni sa ga ma da ni da ma ga ma ni da.

Sagamadani,

0: अभी आप राग मालकोंस पर ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कुमार पात्रो। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए, अभी हम आपको सुनवाएंगे राग बिहाग पर यशराज वादन। कलाकार हैं सुनील कविराज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तापस गुहा ठाकुरता। तो लीजिए राग बिहाग पर प्रस्तुत है यशराज वादन, कलाकार हैं सुनील कविराज।
1: You were listening to A Khayal in the Rag Malkons. Our artist was Dilip Kumar Patro. Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Debashish Odhikari. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a recital on the Yasraj. Listen to the rag Bihag on the Yasraj. Our artist is Sunil Kabiraj. Accompanying our artist on the tabla is Tapos Guho Thakurata. Listen now to the Yasraj in the rag Bihag. Our artist, Sunil Kabiraj.

0: अभी आप राग बेहाग पर यशराज वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुनील कविराज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तापस गुहा ठाकुरता। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे, सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to the Esraj in the Rag Behag. Our artist was Sunil Kabiraj. Accompanying him on the tabla was Tapush Guho Thakurata. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: Ngizwa athi uthathe isandleni.
1: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
0: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खान साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश into a family of musicians. At the tender age of 5, he began his initial training in ghazal singing under the guidance of his father and guru, Ustad Daddu Khan Sahib. He subsequently received training in classical vocal music from the great maestro, Ustad Haji Amir Muhammad Khan Sahib of the Agra and Patiala Gharanas. He is the only artist in the country to have been awarded the top grade by the Directorate General All India Radio, New Delhi, in both ghazal singing and tabla playing. Ustad Sleem Allawale has had a deep passion for ghazal singing since childhood. The ghazals composed by him are based on classical ragas. He has performed ghazals at several prestigious national music festivals across the country. These include the Virasat Festival in Dehradun, the Alap Ghazal Festival and Bazme Ghazal in Hyderabad, and Santwani Festival at Bharat Bhavan, Bhopal. His other prominent performances include जश्न उर्दू ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी, बेगम ऑफ परी बाजार इन भोपाल, सिंजारा फेस्टिवल इन जयपुर, द ऑल इंडिया रेडियो संगीत सम्मेलन इन नजीबाबाद उत्तर प्रदेश एंड द लखनऊ महोत्सव। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल प्रेस्टीजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग द मध्य प्रदेश कला गौरव अवार्ड, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान एंड प्राइड ऑफ भोपाल। ही रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्टाफ आर्टिस्ट एट आकाशवाणी भोपाल इन 2023। इन द सेम ईयर ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंडक्टिंग अ मास तबला परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग 1500 स्टूडेंट्स simultaneously.
1: और अब प्रस्तुत है उस्ताद बाद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन। इनके स्वर में पहले सुनते हैं कैफ भोपाली की ये रचना, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा।
0: And now, presenting the ghazal recital by Ustad Saleem Allahwale, penned by Kaif Bhopali, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वाज अकंपनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल एंड ब्रॉडकास्ट बाय आकाशवाणी दिल्ली। विद दिस वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक।
2: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजी लाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की है। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की

लोगों को सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मांड गायक गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना।

अगली प्रस्तुति है ठुमरी भैरवी। बोल हैं छाए घटा घनघोर, पिया नहीं आए मोर। नाउ लिसन टू अ भैरवी ठुमरी।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं हीरा देवी मिश्र। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय हीरा देवी मिश्र। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे भैरवी दादरा। बोल हैं चलो रे परदेसिया नैना लड़ाएं। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थीं हीरा देवी मिश्र। संगत कलाकार थे तबले पर कुमार लाल मिश्र और सारंगी पर कमल मिश्र। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू विल लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय हीरा देवी मिश्र। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय कुमार लाल मिश्र ऑन द तबला एंड कमल मिश्र ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाषा मिश्रा का वायलिन वादन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी. मध्य लय और द्रुत लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा.

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग जौनपुरी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। विलंबित रचना तीन ताल और द्रुत रचना झप ताल में निबद्ध।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग झिंझोटी। सुभाषा मिश्रा अपने कार्यक्रम का समापन वायलिन पर बजाए राग मिश्र भैरवी से कर रही हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रमोद कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे सुभाषा मिश्रा का वायलिन पर बजाया राग मिश्र भैरवी। तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनीबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sarod recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear the alap followed by the vilambit and drutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकम्पनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शंकर घाणेकर की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है गजानन वाटवे और सहकारियों ने, स्वरबद्ध किया है राम पेठे ने।

अभी आपने शंकर घाणे ने लिखी गजानन वाटवे और सहकारियों के स्वर में यह भक्ति रचना सुनी, जिसे संगीतबद्ध किया था राम पेठे ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं महादेव बुआ शाहबाजकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी महादेव बुआ शाह भास्कर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना कालिंदी साठे के स्वर में।

कालिंदी साठे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी के स्वर में।

ऋषिकेश बोड़स और मंगला जोशी ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थत्ते के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना सरोज गोखले के स्वर में।

सरोज गोखले ने गाई संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं वीणा भक्ति मंडल ने गाई ये भक्ति रचना।